जाकिर साहब के साथ एक कंसर्ट बजाया था, हमें लग रहा बगल में जाकिर साहब बैठे।